रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

मोहब्बत हमदर्दी देखने को यहां आंख तरसती है। इस दुनिया से तुम दूर भले, ये इंसानों की बस्ती है।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आ

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट

अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाए। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का।

शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4, 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8, 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी

हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.
0: Hi, मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट गाइस, आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर डुपर रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चिनार, जो कि हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं। इट्स एग्जैक्टली 10 o'clock इन द स्टूडियो और मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि आज ज्यूस इज समवेयर एल्स, कहीं और वो आउटडोर शूट पे गए हैं, तो आई थॉट के लेट मी चेक इन लिटिल अर्ली। आज भी आप और हम करेंगे ढेर सारी दिल की बातें। मौसम इज ऑसम, गर्म है लेकिन आज अच्छी खासी धूप सुबह से ही निकली है, जो पिछले कई दिनों से हम सूरज और बादलों की आंख मिचोली देख रहे थे, आज फिलहाल तो नहीं है। आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ होगा शो में शामिल, ढेर सारा एंटरटेनमेंट तो रहता है, इंफोटेनमेंट आपके लिए है एंड मोर ओवर आज एक टॉपिक पे भी बात होगी और सुपर

कूल बॉलीवुड म्यूजिक आप तक पहुंचेगा मंडे मॉर्निंग। अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं और अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इफ यू सी एन एम्बुलेंस साइड में आपके बगल से जा रही है तो उनको पहले जगह दीजिए, क्योंकि उनको हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी है। मोर ओवर ओवर स्पीडिंग की कोई जरूरत नहीं, आराम से गाड़ी चलाइए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए, काम कीजिए, खुश रहिए और शाम को घर वापस आइए। फिलहाल इस सुबह को और खूबसूरत बनाएंगे, यू फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज द फ्लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चनार विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। और ये जो गाना है ये कश्मीर में शूट किया गया है, इसके जो विजुअल्स है, इसकी जो अक्कासी की गई है, इसका जो म्यूजिक है, जो लिरिक्स है, जो आवाज़ है, इट्स एब्सोल्युटली अ किलर कॉम्बो। एन्जॉय दिस ट्रैक। और खूबसूरत सी आवाज़ अरिजीत सिंह की है और श्रेया घोषाल की, प्रीतम का है म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य का है बोल। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि ये गाना हमने लिया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से। एंजॉय। तुम क्या मिले, आरजे साहिल इन द हाउस एंड आई विल बी राइट बैक।

वाओ, व्हाट अ मेस्मराइजिंग ट्रैक, तुम क्या मिले। और ऐसे जो गाने होते हैं ना, सुबह सुबह इंसान का मूड सेट कर देते हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू आर अराउंड योर लव्ड वंस और आप अपने दिल की बात उनसे करते हैं। आप सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ।

If you have just tuned in, you are listening nothing but best of the best 90.4 FM radio चनार हर दिल की धड़कन साहिल मुजफ्फर नाम मेरा शो का नाम दिल की बात साहिल के साथ। आज अगर हम मौसम की बात करें, मौसम आज गर्म रहेगा। टेम्परेचर वुड बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर और प्रोबेबली इवनिंग में थंडर स्टॉर्म्स और तेज हवाएं कहीं कहीं भी चल सकती है। चांसेस कम है बट यू कैन नॉट रूल इट आउट। अगर हम कश्मीर की बात करें, आज हर जगह पे जी हाँ सर चढ़ के एक ही नशा बोल रहा है और वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हर एक मैदान में यंगस्टर्स आज बिजी है। आई हैव पर्सनली सीन और कभी कभी हमें भी मौका मिलता है कि हम इवनिंग आवर्स में कभी कुछ स्पोर्ट्स फील्ड्स में जाएं, वहां पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग और नौजवान तो है ही, हर कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहा है और खासकर जो हमारे बच्चे हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट फुटबॉल और वहां पे खेल रहे हैं, यू नो स्वेटिंग इट आउट और अपने कोचेस के साथ सीनियर्स के साथ मिल बैठ के मशवरा करते अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि यंगस्टर्स एक बार फिर से मैदानों की तरफ दौड़ रहे हैं और स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। यस, यू गेस्ट इट राइट, रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, हमारे कश्मीर के एक होनहार क्रिकेटर आकिब नबी डार ने इंडियन टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाई है एंड ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जेन के जिन्होंने टेस्ट टीम में जगह बनाई है और श्रीलंका के टूर पे इंडिया की जो टीम है उसका हिस्सा भी वो है एंड एवरीबडी इज़ यू नो जस्ट वेटिंग कि जब वो मैदान में आएंगे और अपनी कला का और अपनी बॉलिंग का जो जौहर है वो दिखाएंगे। पीपल आर यू नो वेटिंग, दुआएं कर रहे हैं क्योंकि इट्स ऑल टुगेदर ग्रेट फीलिंग, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जब हम देखते हैं कि अपने यंगस्टर्स को कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। पेरेंट्स अगर अभी हम सुन रहे हैं तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको उस उड़ान को उनको पर देने में आपकी ज़रूरत है, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। यू नेवर नो कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के दम पे पूरी दुनिया में अपना नाम तो रोशन करेगा ही लेकिन आपका भी सर फख्र से ऊँचा होगा। खैर बातें करेंगे हम ढेर सारी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है और कुछ लोगों को इसका आइडिया है, कुछ को नहीं है और जो भी नई जनरेशन है उनको शायद इसका आइडिया नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे, कश्मीर में एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था आज से 40-50-60 साल पहले और कुछ झलकियां अभी भी हमें दिखती है। क्या है कश्मीर का ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट और कैसे लोग इस पे डिपेंडेंट थे और ग्रेजुअली इवॉल्व हो गया सारा, तो उस पे होगी बात। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है, आपने बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से, चाचा चाची से, चाची से या कहीं से भी आपने अपने यू नो आस पड़ोस के लोगों से कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें जो पुराना ज़माना था उसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो क्या था, कैसे वो फंक्शन करता था, अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8899-04-904, इस नंबर पे कॉल करें। एक बार फिर से मैं बताऊं, 8899-04-904 कॉल करें, व्हाट्सअप करें या टेक्स्ट मैसेज करें और बताइए अपने दिल की वाणी। एंड मोर ओवर यू कैन डीएम मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स आरजे साहिल मुजफ्फर के नाम से मिलूंगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे। फिलहाल बातों को देते हैं

थोड़ा सा विराम, एक और खूबसूरत सा, जी हाँ, मोहब्बत भरा नगमा आपको सुनाएंगे ओनली ऑन रेडियो चिनार। कुछ ऐसे गाने हैं ना जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, एंड आई एम श्योर कि आप जब सुनेंगे आप भी कहीं ना कहीं अपने दिल का कनेक्शन इन गानों के साथ जोड़ लेंगे। दीजिए मुझे विराम लेने का मौका, आप एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्रैक। इट्स रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड, अपना बना ले, जी हाँ, बेदिया मूवी का ये गाना, एक बार फिर से द गोल्डन वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह। लिसन इन, आई विल बी बैक।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के

0: लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी हाँ, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। शंकर एहसान एंड लॉय का खूबसूरत म्यूजिक फ्रॉम द मूवी माय नेम इज खान, खान फ्रॉम द एपिक लॉट्स। आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चनार पे, दिल की बात साहिल के साथ। और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं कश्मीर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 90.4 एफएम दिल की बात साहिल के साथ पे। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा है। मैंने भी अपने बाप दादा से, नाना नानी से सुना है कि आज से 30, 40, 50, 60 साल पहले की बात है कि कश्मीर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इट वॉज मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्ट। दपान जहलिमस मंज आसन नाव बज बज पकान तिमन मंज सोरी सामान अक जाए पेट बेकी जाए निवान, श्रीनगर पेट इस योर अनान, ये पेट इस तोर निवान, यथ मंज सेरी छे सेख छे सीमेंट छे या मिल्च अस मंज छे ओर योर पेवान पकनावन, या लकर छे इस मित निवान यम स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छे आसा अक जाए पेट बेकी जाए। ती तिमन वक्तन मंज ओस ज्याद पहन इस्तेमाल गसान वाटर ट्रांसपोर्टुक, ती क्याजि तिमन दोहन ओस न रोड ट्रांसपोर्ट तूता इवॉल्व गोमुत की। और मैंने अपने नाना जी से ये भी सुना है कि वो कहते थे कि हमारे ज़माने में एक टेम्पो हुआ करता था जो सोपोर से श्रीनगर की तरफ जाया करता था। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि ये कैचो एजु क्यों दो अराज योर नफर गसान सुबह गैसी शहर गैसी शाम तानी वापस। उन्होंने कहा कि हम सुबह निकलते थे पत इस पर गाड़ी खसान तथा गाड़ी आसन शाम तानी सवार यवान बराबर कहीं, पत शामन वसान बोन गसान घर वापस तथा टेम्पो उस पत सुबह बेगी दो बेवान इथे कन उस दोन त्रेन दोहन पेवान कंटिन्यू यून, पत दुई दुई त्रे दुई तथा सवार फुल गसान तो अति गाड़ी नेरान। तो बेचि तिमों में वोनमुत असि साइकल इस्तेमाल ते करा, साइकलस पेट ते असि असि अक जाए पेट बेकी जाए सोपर पेट श्रीनगर तान गसान बारामुला तान गसान, यत जन वर्मुल इस तमे दो वनान विन ते छस वनान, तो या बंडपूर असि गसुन साइकल इस्तेमाल छ असि मित करान, टांगन हुंद इस्तेमाल इस गसान, रेडन हुंद इस्तेमाल इस गसान, तो गुरियन पेट ते छ लुक इस मित ओर योर पकान। ये कै छ आज प्रत कुन गरस मन ज त्रे त्रे गाड़ी, लकड़ गाड़ी, बड़ गाड़ी, एसयूवी गाड़ी, और यू नो पीपल आर यू नो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक घंटे में जो सफ़र पहले दो दो तीन तीन दिन लगते थे वो आज घंटों में तय होता है। इट्स ऑल यू नो विद टाइम एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ इवॉल्व्ड। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, आपकी कोई ऐसी कहानी है, आपका कोई ऐसा सफ़र रहा है जो आपने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गुजारा है और उन्होंने बताई है कुछ कहानियाँ, तो उठाइए मोबाइल फ़ोन, शेयर कीजिए हमारे साथ 8899-04-904। जी हाँ, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रेडियो चनार 90.4 एफएम फेसबुक, इंस्टा, एक्स एंड यूट्यूब। इन द मीन टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हुक्ड विद मी, डीएम मी, फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स। नाम तो सुना ही होगा, आरजे साहिल मुजफ्फर। फिलहाल बातों को देते हैं विराम, कश्मीर की बात चली, कश्मीरी म्यूजिक भी बहुत इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये जो गाना है, जब ये कश्मीर से मुंबई पहुंचा तो इस गाने ने धूम मचा दी। आइए मिलके एंजॉय करते हैं वोली बोजो ये खूबसूरत ट्रैक, ये छो या तुले खंजर मारे मेरी जान एल्बम भूमि 2023 मिथुन अब्दुलरशीद हाफिज सबिन आवाज बेच असीस कौर। یہ بڑ اخ فیوجن آمت کرشرس تو ہندیس تو اردوس

ऑलराइट गाइस, आप सुन रहे दिल की बात साहिल के साथ। आज साहिल मुजफ्फर इन द हाउस और शो का नाम दिल की बात साहिल के साथ। मौसम आज एक बार फिर से गर्म है और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इट वुड विल गो अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मौसम की जो तपिश है, गर्मी सूरज की जो तपिश है रहेगी। और पिछले एक डेढ़ महीने से हमने जो एक ट्रेंड देखी है कि गर्मी बढ़ती है और इस बार बहुत सारे एरियाज में क्लाउड बर्स्ट हुए और ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, इट्स जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी वजह से हो रही है। एंड मोर ओवर जो लोग एनक्रोचमेंट्स करते हैं, जो रिवर बैंक्स हैं या जो फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे जाके होटल्स बनाते हैं, घर बनाते हैं और इलीगली विदाउट प्रॉपर परमिशन गवर्नमेंट से लेकर या उस तरीके से इन प्लेसेस पे कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं जो लीगल नहीं हैं, एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द रीजंस। और माइनिंग हो रही है, बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं एंड पीपल आर वरीड। और ख़ासकर जो इन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा पिछले एक महीने में हर दिन कहीं ना कहीं से खबर आती है कि फ्लड फ्लैश का खतरा है, बहुत तेज़ बारिशें हो गई है, लैंडस्लाइड्स आ रही है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, माल का जान का नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करे या जो भी कोई काम करे उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, प्रॉपर परमिशंस ले, लीगल तरीके से करें, एक्सपर्ट से एडवाइसेस ले, तब जाके हम कोई कंस्ट्रक्शन करें कहीं पे भी। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी ज़िंदगी है ना, हर एक शख्स की जो ज़िंदगी है वो बहुत कीमती है और उम्र भर की पूंजी इंसान किसी चीज़ में लगा देता है और खुदा ना करे फिर ऐसी जो नागहानी आफत आ जाती है, लैंडस्लाइड्स होती है, क्लाउड बर्स्ट्स होती है, तो एक पल में ज़िंदगी भर का जो सारा सरमाया है ना वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इट्स ऑलवेज वाइज टू टेक द एक्सपर्ट एडवाइसेस वेदर दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई ख़तरा तो नहीं है। और लीगल वेज में जो भी काम किया जाता है ना वो हमेशा इंसान को एक सुकून मिलता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया है। और यहाँ पे सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पे नज़र बनाए रखे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। या ख़ासकर जो अभी हमने देखा है कि जो ऐसे इस फ्लड फ्लैश की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जो पुल है वो बह गए हैं, रास्ते बह गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें क्योंकि उन एरियाज़ में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है,

या लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो इफेक्ट हो गई है, उसको एक बार फिर से बहाल किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम कर रही है, हमें सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़ के थ्रू पता तो चल ही जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे और कुछ करने की ज़रूरत है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। हमारा नंबर आपके पास है 8899904904। जब भी हम दिल की बात करते हैं ना, तो उसमें आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपसे हमेशा ये वादा करते हैं कि जब आप हमारे साथ बात करते हैं तो हम यकीनन आपकी बात पहुंचाते हैं वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज़। फिलहाल बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, कुछ और खूबसूरत से बैक टू बैक ट्रैक्स आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। आज साहिल मुजफ्फर है नाम मेरा। जी हाँ भैया, कहीं जाइएगा नहीं, लौट के आ रहा हूं।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Yes, you're just tuned in to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM Radio Chinar. Har dil ki dhadkan ji aa bhaiya, dil ki baat ho rahi hai Sahil ke saath. Main hoon RJ Sahil Muzaffar. और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं ये मॉर्निंग शो. आज आज इज यू से समवेयर एल्स. सो आई थॉट दिल की बात करने में जो मज़ा आता है ना, तो उसका इंतज़ार शाम तक क्यों करें. अगर मौका मिल गया है तो आइए घुस जाते हैं स्टूडियो में, करते हैं अपने दिल की बात. आज ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो रही है बात. उमर हमारे साथ जुड़े. उमर कहते हैं कि मैंने भी बाप दादा से ये कहानी सुनी है कि पुराने जमाने में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो कैसा था. बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और जो हम माल लाते थे यहाँ से, जो भी बेचते थे, वो पूरा जहलम के थ्रू होता था. और गवर्नमेंट का भी कुछ टाइम से ये प्लान रहा है कि हम इसको रिवाइव करें एज ए टूरिज्म, यू नो, पोटेंशियल इसमें देखा गया और टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर इसको हम रिवाइज करेंगे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन कमिंग डेज, एंड वी आर होपफुल कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगी जब जहलम के बीचों बीच हम बोट में ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और कुदरत के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनका लुत्फ लेंगे. और बहुत सारी प्लेसेस है दुनिया में जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट को एक अलग अंदाज से रिवाइव किया गया है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है. जो लेक्स है, जो रिवर्स हैं, वहाँ पे उनके बैंक्स को ब्यूटिफाई किया गया है. लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं. और जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो तो पीपल गो टू द, यू नो, डिफरेंट प्लेसेस. और जैसे हम डल लेक में अभी देखते हैं, वहाँ पे शिकारा में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह टूरिस्ट जाते हैं, चार चिनार जाते हैं, दरगाह जाते हैं, शालीमार जाते हैं, निशात जाते हैं, और एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है. यहाँ पे भी जहलम के बीचों बीच अगर ऐसा कोई सिस्टम कहीं पे तैयार हो जाए, गवर्नमेंट ने, यू नो, इस बारे में बहुत बार बात की है. प्रोबेबली, यू नो, काम बैकएंड पे चल रहा होगा, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया

It's going to be an amazing revolution, isn't it, guys? क्या कहना है आपका, क्या सोचते हैं आप, समझते हैं आप, क्या है आपके दिल की वाणी, बताइए हमें, उठाइए मोबाइल फोन 8999 04 904 पे कॉल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करके अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए. और इन द मीन टाइम इफ यू आर ए सोशल मीडिया फ्रीक यू कैन हिट मी अप ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स आरजे साहिल मुजफ्फर के नाम से मिलूंगा फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स पे, जुड़ जाइए डीएम मी और बताइए अपने दिल की वाणी. फिलहाल एक और खूबसूरत ट्रैक आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ फ्रॉम द मूवी रा 1, अमेजिंग सॉन्ग. Enjoy the track. आज ये साहिल मुजफ्फर नाम मेरा, लौट के आऊंगा.

0: कुछ तो हुआ है,
1: कुछ हो गया है।
2: प्यार हो गया? प्यार से और कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज्ड।
3: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ

0: जिस्म की भूख।
1: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
2: प्यार प्यार इज टू चिल।
3: प्यार अभी बताता।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है, हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम को तो प्यार है,
1: नैना,
2: अमन,
0: स्वीट स्वीटो स्वीटो स्वीटो परिचय
3: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल्द
4: करो अपने दिल की बात मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक।
0: वादिये लोला।

0: के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

ये आवारापन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और इस मूवी के चर्चे बहुत है क्योंकि जब इमरान हाशमी की बात आती है, आवारापन मूवी उनकी बहुत चर्चों में रही है। और एक बार फिर से इसका सीक्वल बनाया गया आवारापन 2, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होगी। और इस मूवी के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे घड़ी मुझे इशारा कर रही है, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। 11:55 इन द स्टूडियो क्लॉक। और आज ढेर सारी बातें की, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके हवाले से बात की। इट वॉज आई थिंक एक दो घंटे में हमने बहुत सारी बातें की, बट जाना पड़ेगा, वक्त की कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 बजे दीबा शो करेगी शुरू अपना, जिसका नाम है चिनार बीट्स। चिनार बीट्स के लिए आप थोड़ा सा कीजिए इंतज़ार, साहिल मुजफ्फर को दीजिए दिल की बात। साहिल के साथ से इजाज़त। आई एम प्लेइंग दिस सुपर कूल बॉलीवुड ट्रैक ओनली फॉर यू। सुनते रहिए टिल द टाइम वी मीट अगेन। लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल।

ये हकीकत और मैं हूँ और रहूंगी बराबर आपके साथ 2 बजे तक। परवा तो है, तभी तो आ गई मैं। आए हाय, रहा नहीं चाहता था और आ चुकी हूँ मैं स्टूडियो में आपसे ढेर सारी बातें करने, क्योंकि बीट्स और रिपीट सोचना और बीट्स एंड मोर वाइब एंड ट्राई।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats. Ab enjoy kare only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa dei sari information aap tak pahunchti hai. Well, I'm super duper excited ki show start ho chuka hai and mujhe bahut sari baatein karni hai. Aur weekend mein aapne kya kiya aur kya cheeze thi, kaafi exciting thi, kaun si aisi cheez hai jo aapne explore ki aur kya hai wo dil ki baat jo pahunchana chahte hai wahan wahan tak. जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. तो फिलहाल के लिए मैं तो स्टूडियो में आ चुकी हूँ, आपसे यही सारी बातें करनी और बातों का सिलसिला जारी रहेगा. अब आपकी बातें कौन सुनेगा, मैं हूँ ना, मैं तो बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि आप कब आएंगे और मेरे साथ बातें करेंगे. सो फिलहाल के लिए मैं हूँ, आप है, मौका है, दस्तूर का जाने का, हुजूर बन जाइए सो का हिस्सा, सुना कर कोई मजेदार से किस्सा. ये 47 वेट का ना ही परवा, बट हाँ बैड वैक सॉन्ग्स ना हो तो परवा हो ही जाती है भैया. हाँ जी, प्यार इतना है, बेशुमार है, कोई नजर ना लगाए, बस ये प्यार बढ़ता रहे आपको और हमारा साथ बढ़ता रहे, क्योंकि ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM.

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट, शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे ओपन हो चुका है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए फ्रॉम बोथ साइड्स. एंड वी हैव टू बी क्लियर दैट अभी रास्ता हाल ही में मेंटेन होकर फिर से ओपन हो चुका है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, बिकॉज नेशनल हाईवे पे पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं चलता है. बट हम बता रहे हैं आपको कि आज जो रास्ता है वो ओपन है फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए अभी कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आ चुका है. सो आज आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, इट्स टू वे ट्रैफिक, आप आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. देखिए, वेदर कंडीशंस के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण, शूटिंग स्टोन्स के कारण रास्ता ख़राब हो चुका था, बट अभी बहाल हो चुका है. बट ओनली फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स ही ट्रैवल कर पाएंगे, आप जा पाएंगे जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू. एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना, दैट्स वेरी नेसेसरी. यानी कि जो हमारे पास ड्राइविंग SOPs है उन्हें फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत देना है, और अपने दिमाग को काफ़ी तेज़ रखना है, क्योंकि कभी कभार हम ऐसे सोचते हैं कि गलत जगह पर ओवरटेक करेंगे तो हम बच जाएंगे. देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस की नजरें है ना, काफी तेज यानी कि तिरछी नजरें है, वो हमें पकड़ ही लेती है. सो हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो. व्हेन वी से वी केयर फॉर यू, वी मीन इट. और हम चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें. अब ये तेज भागने वाली बात कहाँ से आई? यहाँ से आए कि अगर तेज़ भागना है, देखिए माहौल, सिचुएशन आपको इजाज़त भी देना चाहिए ना कि आप तेज़ भगाए या भागे. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, बी कूल नॉट फूल, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि सही मैसेज से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं और सच में लाइफ में, रियल लाइफ में हीरो बन सकते हैं. फॉर दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM. आप

0: Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva only on Radio Çınar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.
0: Chinar Beats with Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.

अनस्टॉपेबल शोचना और पीट्स का एक छोटा सा सेगमेंट जहां पर डेली डोज है, रोज एक छोटे से डेली डोज हो जाए तो मजा आ जाए। और डेली डोज में है ये कि हम जब अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं या कैसे सो चीज जो सर वार ज्यादा इफेक्ट करान का सो चीज जो सर जिंदगी खतर असल छो आसान की है पर स्टिल हम उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखिए, अगर जिंदगी में कोई चीज सही नहीं लग रही है उसे वक्त पे रोकना ही हमारे लिए भलाई, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में परेशानियां तो है पर अगर कोई इंसान परेशानी बनकर आए और हमारे पास मौका है उस इंसान से दूर जाने का, अगर वो लाख समझा के भी आपका नहीं समझ पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। अगर वो आपके प्यार को, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझते हैं और सिर्फ उसमें मैं ही है और आपका ही है ही नहीं, समझ लीजिए कि आप उस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। चाहे फिर वो हमारा दोस्तों का रिलेशन हो या फिर कई पैसा इंसान हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंडशिप्स में अक्सर हम धोखा खा जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही अच्छे हमारे लिए साबित होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए एक हार्ट ब्रेक की तरह होते हैं और कभी कभार कुछ हार्ट ब्रेक्स उनसे बाहर निकलना फिर काफ़ी मुश्किल लगता है। तुम चीज़ छन कारण पा से कि ट्राई करूँ कि अपने में थोड़ा सा ध्यान दे, ट्राई करूँ कि इस समझो एस क्या छु नीड, एस क्या चीज़ छु ज़रूरत, तो कम चीज़ छु यम ना सानी सेहत खातर तो सानी ज़िंदगी खातर छन सही।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खबर ऑनलाइन, खबर ऑनलाइन और खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर। तो मैंने बोला खबर विस्तार सांत की क्या चल रही खबर बारस में बात करें। तो आज की खबरों में हम बात करने जा रहे हैं, यूजुअली वी वर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक। टॉक्सिक का ट्रेलर इतना ज्यादा हाइप्ड, अभी ट्रेलर अगर हम देखें तो टॉक्सिक ही है, टॉक्सिक का टॉक्सिक पन हमको देखने को मिल रहा है। बट पीपल आर लविंग इट, यानी कि ये जनरेशन थोड़ी सी टेढ़ी, यानी कि जेन ज़ी भी आर लविंग द ट्रेलर, क्योंकि टॉक्सिक में जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है इट्स सो सो सो गुड, इट्स ओवर हाइप्ड, ओवर ओवर एंड ओवर, बट या वी आर नॉट ओवर। सो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ट्रेलर अभी हमें देखने को मिला टॉक्सिक। यार आडवाणी, बस इतनी ज़्यादा तारीफ किसी, मुझे नहीं लगता किसी भी को स्टार की हुई है जितना यश और नयनतारा ने कियारा आडवाणी को प्रेज़ किया है उनके सीन्स के लिए, उनकी केमिस्ट्री के लिए, उनका ओवरऑल जो रोल रहा है अभी हमको जो दिखाई दे रहा है ट्रेलर में वो भी कमाल की लग रही है। बट उन्होंने तो पूरी मूवी ही शूट की है कियारा के साथ, एंड दे आर लाइक कि कियारा ने, मुझे लगता है कि इसके बाद कियारा को अलग ही वे में देखा जाएगा। ये उनकी करियर का बेस्ट बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस था। बट ये है कि बात यही तक नहीं, उसने आगे, यानी कि उसके बाद हुआ क्या हुआ ये कि लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था कियारा का, लेकिन पति यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्होंने सपोर्ट किया है कियारा आडवाणी को, बोला है कि शी इज़ लुकिंग अमेजिंग, एंड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है वाइफी को कि वो काफ़ी सुंदर भी लग रही है, एंड ये उनका करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। बट फैंस का कहना है ये नहीं है बाबू, ये तो शेर श्यागा कमाल है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं।
1: ओए, सब ठीक ठाक, चिट्ठियां लिखना तो,
0: और यही तो है केमिस्ट्री तो वहाँ पे भी थी कि दिल मांगे मोर, एंड परमानेंट बुकिंग तो तभी हुई थी, अभी तो बस एक दूसरे को प्रेज करते हैं एंड फैंस आर लविंग, एवरीबॉडी इज लविंग। बट आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा क्या आडवाणी का परफॉर्मेंस, और क्या लग रहा है कि क्या वो जस्टिस कर पाएंगे जितनी तारीफ हो रही है। 8999 04904 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: चुनार बीट्स विद हर्षदीप ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: यानी कि क्या है जो इंडिया को बदल रहा है, कौन सी सी चीज़ है, बीट रैपिड सोशो इकोनॉमिक थिंग्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर कंट्री, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं. हम बोलेंगे या तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा जो इंडिया है वो बदल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, फिजिकल कनेक्टिविटी से, या डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की वजह से, जहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जिन चीज़ों के लिए हमें घंटों वेट करना पड़ता था वो डिजिटली अभी इजीली हमारे पास, हमारे हाथों में, हम खुद चीज़ वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स जो है वो सबसे बड़ा चेंज था हमारे इंडिया के लिए. या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें हाईवेज, एयरपोर्ट, अर्बन मेट्रो, रेल्स जो है वो चेंज हो गई, या फिर सस्टेनेबल एक्सपेंस जो है वो कम हो गए, यहाँ की नेशनल हाईवे सही होने लगे, ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, अर्बन मेट्रो रेल नेटवर्क्स की वजह से हम बोल रहे हैं हमारे इंडिया में चेंज आई, या फिर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. हम देख लीजिए कि जहाँ पर इंसानों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता था, अभी मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि चंद घंटों का जो सफ़र था, जो टाइम था, टाइम को काफ़ी ज़्यादा हम ईजीली अभी मैनेज कर पाते कि हमारे पास टाइम भी बच जाता है और हम घंटों का काम मिनटों में करते हैं. पहले जो चीज़ें हमारे पास नहीं थे अवेलेबल, अभी वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है. क्या ये हम कह सकते हैं कि चेंज दैट्स इंडिया एंड वो चेंज आ रही है हमारे इर्द गिर्द? दैट्स ट्रू, डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, बट कुछ और भी बदल रहा है, यानी कि कुछ तो चीज़ें हैं. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, हमारे कश्मीर में भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है. एंड रिसेंटली मैं आउटडोर पे थी, शूट पे थी, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर की. एंड स्पेशली आई रियलाइज दैट कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बदल चुकी है. कुछ आने वाले वक्त में जो है कुछ चीज़ें हमारे लिए सही नहीं थी, कुछ चीज़ें जो है वो बदल चुकी है, कुछ चीज़ें जो नेसेसरी थी, और अभी उन्हें ये रियलाइजेशन है कि सच में कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी था, और तभी हम कहते हैं ये हमारा बदलता देश है, बदलता इंडिया है, चेंजिंग इंडिया. एंड आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल चुकी है हमारे इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में, बताइए, घर से बताइए. 8899-04904 पर टेक्स व्हाट्सएप कीजिए. शो चिनार पीस कैसा बन जाए.
1: हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे.

0: Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
2: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats ve Dhar Chediva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

शो म्यूजिक ऑन डिमांड और आई मन की रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर इस ट्रैक के लिए फ्रॉम द मूवी मैं तेरा हीरो। आप भी हीरो बन सकते हैं स्टोरी के और आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899049 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं।

है क्योंकि शो शुरू हो जाएगा हंगामा विद फुल ऑन ड्रामा. फिलहाल के लिए शो चुनाव 20 म्यूजिक ऑन डिमांड कोटारा बाय करना पड़ेगा. अभी दिल ये कह रहा है कि तुसी मत जाओ, बन मैं आऊँगी कल. अगर जाऊँगी अभी तो ही कल आऊँ तो ही बातें कर पाऊँ. तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिए. कल 12 बजे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इन्जॉय कीजिए अपने दिनों को और सुनते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

देखिए अनफॉर्चुनेटली जुम्मेरात नहीं है, मंडे है. मंडे इज नॉट सो फन डे बट इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू द वर्क अगेन. और साथ तो निभाऊंगी बराबर 2 से 4 क्योंकि रेडियो सिनार पर शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहां ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता. मुझे तो संडे की याद आती है, पर क्या करें, पूरा हफ्ता आपसे बात करने को मिलेगा. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग डील. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. शो शुरू हो चुका है, बहुत सी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा यहाँ बराबर 4 तक. सो बन जाइए, जुड़ जाइए शो का हिस्सा.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: डीजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, शो हंगामा है, हर दिन का एक टॉपिक रहता है, पर वो कुछ ट्रैक्स के बाद आप तक पहुंचेगा। अभी के लिए रेलवे अपडेट्स ऑन द गो। अभी आज की जो रेलवे अपडेट है दैट इज़ द सेम, क्योंकि जो भी कैंसल ट्रेन है वो तो हर दिन मैं आपको अपडेट करती हूँ कि 14 अगस्त 2026 तक वो तीन ट्रेन जो हैं, सबसे पहले बात करें तो 12:40 की जो ट्रेन बड़गाम से बानीहाल के लिए निकलती है वो, और 5:10 की ट्रेन जो बारामूला से निकल है वो भी कैंसिल हो चुकी है, और एक बानीहाल से निकलती है सुबह के 10 बजे वो भी कैंसल्ड है। सो उसके अराउंड ही अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान था तो आप अपने जो भी ट्रैवल प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंगली फिर से रीशेड्यूल कर सकते हैं। और बाकी जो भी लोकल सर्विसेज है जो कश्मीर रेलवे लिंक का, बारामूला बड़गाम बानीहाल संगलदन, जो भी लोकल सर्विसेज हैं वो एज पर द समर टाइम टेबल शेड्यूल्ड हैं। कोई भी डिले, कोई भी कैंसिल, कोई भी या रीशेड्यूलिंग नहीं है। यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन आप किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेशन पर बिल बोर्ड लगे होते हैं, टेक अ पिक्चर ऑफ इट ताकि आपके साथ हमेशा वो डिटेल जो है वो हमेशा अप टू समर, जब तक समर टाइम टेबल चल रहा है तब तक चले। उसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट इट ऑन द गो ऑन योर फोन और एट द डोर स्टेप, तो रेल वन ऑफिशियल ऐप है जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, द ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स, एवरीथिंग ऑन द गो। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। और अगर आप बाय रेल सफ़र कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी, सवारी अपनी और सामान की खुद जिम्मेदार है, और SOPs को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा और आपका जो ट्रेवल है वो किसी भी हसल फ्री से दूर रहे। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: जे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अब देखिए, जैसे मैंने वादा किया था कि वापस आके आपको बताऊंगी कि आज का टॉपिक क्या है, और आज का टॉपिक कुछ खास है, कुछ बहुत पर्सनल है बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर जो अडल्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी इमोशनल भी होता है।
2: बोलूंगी मैं तेरी ही बानी, गाऊंगी मैं।
0: और जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि कैसे वो पहला, जब हमें वो पहली सैलरी मिलती है तो वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में। बिकॉज़ यूजुअली जब भी आपको एक पहली सैलरी मिलती है अपनी लाइफ टाइम में, तब आप बहुत यंग होते हैं। तो जब आपको वो सैलरी मिलती है, लाइक ईदर पे चेक, और आपके पास वो पैसे आते हैं, चाहे वो कितने ही कम हो या कितने ही ज़्यादा हो, आपको हमेशा वो एक डिफरेंट इमोशन आपके साथ कैरी करता है। एक ऐसा इमोशन जहाँ पे आपको समझ आता है कि शायद अब मेरी ज़िंदगी एक डिफरेंट तरीके से चलेगी, भले उतना कुछ चेंज होता नहीं है, बस आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है कि आप कमाना शुरू करते हैं। बट अगर बात करें तो एक पहली सैलरी की जो फीलिंग है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। हम हमेशा पहली सैलरी से कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं लोगों के लिए या फैमिली के लिए, अपने लिए गिफ्ट्स होते हैं, और वो बहुत सारे इमोशन चल रहे होते हैं कि सेव करूं, खर्च कर दूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो आज हम इस पर्टिकुलर फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मेमोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा क्या लगता है, और यूजुअल जो जेनरिक हर कोई महसूस करता है। आप अकेले नहीं हैं, अगर आपको बहुत सी बहुत से कहते हैं ना बहुत सारे इमोशंस महसूस

होते तो आप अकेले नहीं है बल्कि ये सबके साथ होता है. तो आज शो हंगामा पे हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल फीलिंग ऑफ गेटिंग दैट फर्स्ट पे चेक ऑफ योर जॉब. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM, जहां शो चल रहा है हंगामा. मैं हूं आरजे अस्त्रा और आज हम फर्स्ट पे चेक मेमोरीज के बारे में बात करें, यानी कि जब हम पहली बार अपनी सैलरी अपने हाथों में, इन शुभ हाथों में लेते हैं और हमें क्या फीलिंग आती है. सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, दिस इज नॉट इन अ फन वे, दिस इज एक्चुअली एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्रोमिनेंट इमोशन जो हमें महसूस होता है, वो ये होता है कि जब हमारी मेहनत की कमाई पहली बार हम कमाते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस तो महसूस होता ही है, बट हमें वो अगर कितने भी कम पैसे हो ना, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अब कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल हंगामा. और हंगामा पे आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है. मैं मानती हूँ कि जब भी एक इंसान अपनी मेहनत से पहली कमाई अर्न करता है तो वो अपने साथ साथ अपने लव्ड वंस के लिए इसीलिए इतने सारे प्लान्स बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई मैंने बहुत कुछ जीत लिया है, मेरे पास तो अभी बहुत पैसे हैं. बट धीरे धीरे जो एक्चुअल मनी का जो रियल साइड है इन द वर्ल्ड, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सीखते हैं, फाइनेंस के बारे में सीखते हैं, टैक्सेस के बारे में सीखते हैं, बट उसके बारे में धीरे धीरे बात होगी. बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बारे में है, इस बारे में द शाउट आउट फॉर द थिंग that when we get the first paycheck, first salary of our life, we feel something crazy. जो नैया

है वो पार लग ही जाती है, क्योंकि फीलिंग ही वैसी होती है, बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ऐसा लगता है कि भाई अब तो भाई अपना पार्टी देगा सबको। 8899904904 इज नंबर एंड यू कैन जॉइन द पार्टी दैट इज गोइंग ऑन हियर। हंगामा शो ड्रामा मैं मस्त सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

हाय, मैं हूँ अस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा तो है और हंगामा में ड्रामा के साथ आज का टॉपिक भी है। और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पे चेक के बारे में। जब हम पहली बार नौकरी लगते हैं बहुत क्रेजी फीलिंग होती है। वी वांट अ जॉब बट व्हेन वी हैव अ जॉब तो फिर क्या चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होती है कि जो पैसा तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, सैलरी मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट देखिए जो एक्सपेक्टेड होता है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करेंगे वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपने आप को एक हिसाब से हम खुद को वो सवाल पूछने लगते हैं कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ मनी किसी भी जॉब से हमें मिल रहा है, इज़ इट वर्थ इट कि हम पूरी ज़िंदगी वो काम करें। अभी डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। एक इंसान अगर ऐसा कोई काम करता है दैट दे लव तो उनके लिए ईजी होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना प्यार के कोई उनको वो काम नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगता वो काम करना, फिर भी वो करे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ताकि वो अपनी लिविंग को कंटिन्यू कर पाए। और ऑनेस्टली अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली अपना काम एंजॉय करते हैं, दे लव द वर्क दे डू एंड दे अर्न मनी फ्रॉम दैट वर्क, दैट्स अ वेरी बिग फॉर्चुनेट थिंग जो आपके साथ हुआ है ना। ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आस पास के लोगों को देखिए। ग्रैटिट्यूड में रहना ज़रूरी है और खुद को कंपेयर ना करें। ये शो वारिया ज़रूरी कि इस करो ना पन्नेस पानस कंपेयर लुकन सकें कि ठीक छो अगर मैं कम कमाता हूँ या ज़्यादा कमाता हूँ या दूसरा कम कमाता है ज़्यादा कमाता है, किसी भी सूरत में आप अपने आप को, अपनी सैलरी को, अपने काम को किसी के साथ कंपेयर ना करें। बिकॉज कहते हैं कि कंपैरिजन इज़ द डेथ ऑफ जॉय। आपकी जो खुशी होती है, जो छोटी से बड़ी खुशी आपकी ख़त्म हो सकती है अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करें। इसलिए ज़रूरी है कि कंपैरिजन को छोड़ो और अपने लिए कुछ करें। यानी कि जो भी आप लाइक यू गेट सैलरी एवरी मंथ तो अपने लिए कोई हिस्सा बचाएं। और अपने लिए बचाना सिर्फ खर्च करना नहीं होता है, बल्कि अगर आप सेव कर रहे हैं फॉर योर फ्यूचर, फॉर एनी ऑफ द बिग इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, वो भी अपने लिए ही है। सो सेविंग बेसिकली आपकी खुद की लाइफ के लिए, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, इधर यू आर गेटिंग योर सेल्फ एनी कोई चीज़ ऐसी जो जिसके लिए आप बहुत टाइम से सेव कर रहे हैं, वो भी खुद को ट्रीट करना ही होता है। तो बेटर है कि आप अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल करें। बट इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट रहता है जो रियलिटी चेक का कॉन्सेप्ट होता है। और जब वो नए नए जॉब होल्डर्स को

एक रियलिटी चेक मिलता है, तब उन्हें समझ आता है कि भाई मेरे पास जो सैलरी है ना वो काट कूट के थोड़ा सा ही बचता है और बाकी सब डिडक्शंस में, टैक्सेस में और एक्चुअल वैल्यू के तौर पर नेट जो आपके पास रहता है, दैट इज द रियल सैलरी यू हैव। सो आज बहुत ही पैसे की बात हो रही है, मनी एंड लिविंग लाइफ, तो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं। 8899-904-904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूं अस्रा सुंदर, रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक जी, हॉट इज फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है। जी हाँ, हंगामा है शो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट पेज एक मेमोरीज। और अभी तक हमने बहुत ही इमोशनल पैट जो है भीड़ उसके बारे में हमने बात कर लिया, बट एक और साइड है पैसे का। और जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं बट आप पैसे की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वो जेन्युइनली आपको एक्सपीरियंस तभी बढ़ता है जब आप उस सिचुएशन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बट जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तब आपको ये मालूम नहीं होता कि ये पैसा आखिर में कैसा है। इसमें टैक्स भी होता है, जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो तो सबसे पहले कट होंगे ही। आप अगर कहीं पे रहते हैं रेंटल बेसिस पे, या अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है। बस खाने पीने का, रहने का, इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारी जो चीज़ें हैं वो कट जाती हैं। उसके बाद जो आपके पास ग्रॉस और नेट के बीच में जो आपको डिफरेंस नहीं पता, वो आपको पता चल जाता है। तो बेसिकली जो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द पेइंग ऑफ द बिल्स और जो टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास पैसे बचते हैं, वो एक्चुअली आपकी सैलरी होती है। तो अब आप मुआयना कीजिए कि आपके पास जो पैसा है वो कैसा है।

जी हाँ, हो पैसा तो मुसीबत है क्योंकि टैक्सेस पे करने हैं, डिडक्शन, जो कुछ भी चल रहा है, बड़े बड़े टर्म, क्या करूं मैं। और इसके अलावा ना हो तो भी मुसीबत क्योंकि जिंदगी कैसे जिएंगे बस। For them, it's all about the money, but for us, it's all about you. 8899-0904 is the number. You can call, message, text, WhatsApp. Or ban sakte hain hottest frequency ka hissa. Main Wasra sunte rahiye Radio Sunar 90.4 FM, kyunki ye hai har dil ki dhadkan. Aur kuch hi tracks ke baad hum baat karenge kisi aur special cheez ke baare mein. Main Wasra sunte rahiye Radio Sunar.

हाय, मैं हूँ अस्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अब देखिए, अभी 3:30 हो चुके हैं और वेंसडे और सैटरडे के अलावा हर दिन एवरी डे आप तक पहुंचता है गेम ऑन। गेम ऑन जहाँ मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो, तो बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि कुछ ही ट्रैक के बाद कुछ मस्त न्यूज है। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sunar 90.4 FM, segment है Game On, जहां local, national, international sports update और sports related कुछ ऐसे facts जो कहीं और नहीं मिलते। मैं वास्तव में सुनते रहिए Radio Sunar, मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM.

0: इसी के साथ आप तक पहुंचाएंगे हम गेम ऑन का आज का फैक्ट। ओ गुरु देखो अभी ठोको ताली तो चलता रहेगा, बट देखिए आज एक ऐसा फैक्ट है जो सुन के आप भी ताली बजाएंगे, जिसका आज का फैक्ट है दैट इज द इंडिया हैज इट्स ओन ओलंपिक्स, दैट इज रूरल ओलंपिक्स। पंजाब जो है वो होस्ट करता है एनुअली यानी कि हर साल किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जहाँ पे बहुत बुजुर्ग मर्द खवातीन आते हैं और वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, चाहे वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो अपने बालों से बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं ट्रक्स हैं उनको पुल करना, अपने दांतों से बड़े बड़े जो बोरे के स्टैक्स हैं वो उठाना, और यूथ भी यानी कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी पार्ट लेते हैं। बट देखिए बहुत ही फैसिनेटिंग है ये चीज़, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है, बहुत रूरल है, बट है तो ओलंपिक्स। देखिए आज का फैक्ट तो हो गया और कुछ ही ट्रैक के बाद हम आपको कहेंगे अलविदा। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM।
1: टोन एंड टो रेडियो सुनार 90.4 FM। गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM।
0: एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

यार, झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे और क्या और क्या। और ये है कि आज के लिए बस इतना ही, कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन। 2 से 4 रेडियो सुनार पे होता है हंगामा, ड्रामा और एंटरटेनमेंट। आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। आज के लिए बस इतना ही, और यू स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी

0: संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाय टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: On stage, 5 minutes.
1: Okay. तुम आ रही हो? मैं जा रहा हूँ. लगता रूम में रह गई.

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

beats with Harshadeva only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी। खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी

0: भूमि का सही इस्तेमाल करते हैं। कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

It's Vedhar Chediva, only on Radio Channel 90.4 FM.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199

0: अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी

0: कीजिए।
1: लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसम

बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: 90.4 FM.
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

सिगरेट, चेन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
2: आप वन
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ, ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया।

Ah.

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तुम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

हमके वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।